चित्ते शांति शांति ती ती ती डू डाय चिम याय हो चुई डू डाय डू चिम यू डेम डेम आ ताड़ी कम शिवड़ी अच्छी

फिर महेश मेरा वो मात पिता का ये भैया जिनके को खिया ली नया होता। सकल पंज के राम राम गुरु जी के बंदगी, सकल पंज के राम राम गुरु जी के बंदगी। मत करो गुमान भैया थोड़ा जिनके जिंदगी, मत करो गुमान भैया थोड़ा जिनके जिंदगी। जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाल के, जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाल के। सब भाई में मिलके रहो या उसी इस नवाय के, सब भाई में मिलके रहो या उसी इस नव। अरे राम